0: ठेला नशाला ठेला नशाला
1: दिवे ही एफएम के खुम में गटी रहे के फैशन में दिवे ही अमिल्ला रागे के लावे को

0: मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि मुझे ये बात आपको बताते हुए डर लग रहा था।
1: और अब डर नहीं लग रहा, पहले लग रहा था। गुस्सा तो मुझे अभी भी आ सकता है,
0: डर तो अब भी लग रहा, लेकिन मैं झूठ बोल के सो नहीं सकती। मैं जानती हूँ ये मामूली सी बात है, लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना।
2: मैं ड्रामा की पाकिस्तान के टीवी इंडस्ट्री लिबुन टर्निंग पॉइंट के गोतुका कीना भाई कुसी फकुरी पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री अलुंग आरास्त कुरु

0: ओएसटी
1: आदि देम्योती ओएसटी मे बैंग मि हफ्ता ग मि बलालनी दिवे सिनेमा के माजी ग लावेकन मि हफ्ता ग मे मि होवाली इतिहास 11 बनार नुकिन फिल्म लोदिफा के प्रमोशनल लव लव किया फवनी उनुषा मे लव हिमनाफवा फिल्म लोदिफा बलार मे वरा खास औफेद में देहा सोळवनार बेवी हैवन गोमी फिल्म एवोडम एमे कामया फिल्म की मि फिल्म मे फिल्म की व्यापारी के गुतु नाकामया फिल्म कम गवियस फहुं फिल्म बेली गिनफरातक कामो दिया फिल्म आदि हमें यह कि एक गांव में फिल्में वोड़ का बड़ा कामयाबी हो दी फिल्में आदि ओएसटी में भय मिहफ्ता का मिहोवाले लोदिफा के मिलावया एक ही का मिहाई साबुं एमएफएस मिशो निमालाना इराद कुरेविया अन्ना हफ्ता का वेस मुनिफोई फिल्म के दायरा के एमएफएस के मालूमाता खबराएं की का अनबदल कराना

देवा हिंदू एवरेम बुने थे त्याबा मी हुंगे खा बफाइंग अलुकं कों उलुन थके थे त्याबा मी हुं एक्कीबा कुरुमा कस्तु खोग्यं उड़े मी हेव कम गा मेनुई मीना एबही रसूला नुए आदि एवरेम बुने थे अमिल्यं उफद्दा फावा दोगे खम गा मेनुई मी कुरुआन नुए आदि एवरेन ना हक कुरुआन आ हिंदू ए कुरुआना में दु काफिर मी हुं बुनुए फालु वेगेम्वा जादू खमगा मेनुवी मी कुरआन वे।

नदी के मेगाहर्ट्स दिवे फिल्म मिगड़ी का कुरिया के नाटी टाइम रिक्वेस्ट में तो का शोगन का सीधो रिक्वेस्ट में जहाँ देने शो का लावे अंगड़ो हाथ में नोचे खमा बाण माध्यम वागो तो मैसेज कर मुंदा ने पीएसएम ऐप में देर को डीएफएम 91 में भेजा।

आलवाश हम आकाशवरुं तिमंगे वेरी रसकलांगे हाक्को गई फनुवते एकलांगे गायब थम मोला दिन वड़गिम्बा रसकलांगे।

0: Pokémon.
1: Jason, vara riti lave ka fomi baddal kolini den a shau fashion was fa kolin tavara baver ro da ta kuramunda farate ke Jason ke na me sama e hun terin na belun terin na nenge e magamu Jason ba furamun de furafie mi eva ka dakkalam bole nenge kula ko nenge e dium ga kurin hama ga me shau fa kolam be ne me raje ke film industry ke huri hama se ka te bala farate film industry ke mase ke te bala ya me constructive criticism बिना कुरुवानी भी फाड़ो क्यों किया फराते जयशन्ना के हैं वे मैं जयशन्ना मैं आम गोते का फिल्म बालंग कामुदायर उन्होंने कौन काल जोन रहते के तारुतीप कोलन बेरे जकिन तारुतीप कोलन
2: इम्मे बालाई तुम बालनी हॉरर बिरुवेरी फिल्म अब तो इस दिवे राज्य के बिरुवेरी फिल्म तबे स्वर कामुदे बेलगाम तक बिरुवेरी फिल्म तबे साथ को इंडोनेशिया थाईलैंड तंतरगे टर्की तंतरगे छी पे दे देंग वर कामुदे ड्रामा फिल्म तबे फैमिली थीम्ड अच्छी वस्वर कामुदे देंग सुपरनेचुरल अच्छी वस्वर कामुदे साइंस फिक्शन इस बाइंग अच्छी फैंटेसी देंग ओपेनहाइमर खाल अच्छी मिहोने ने हिस्ट्री या क्राइम मा थ्रिलर या मिहोने आचे इंटरसेक्ट वा हथरो अंगोली का हुंडा फिल्म तबर बाला है पे Then adi mi hasa ko mushtama ke hawasa ga mi ole diri ole farata nasu farata hasa ni benwa farata neurodivergent kudi mi hun na be ko tong hada fun film tawara kam de my name is khan jashan e ha kam de ni hem be ke mara kam da film e
1: okay ehme ma mi ane hin tinan listu kiyali iru mi romantic film tak ko ke wah ke waran na de
2: no e romance hun na mi huri ha film tak tere fe di fa
1: solely based on romance films tak ko ke wah ke na de ha gaya nuwa chiki pa
2: then romance is everywhere around us romance ho da karnu de romance ve ho ra tere ga ves romance faalwe drama tere ga romance faalwe ekam ko wagot ki ishq ki modi zindagi barbaad kolla
1: dene ke a
2: gisluma le karuna pohora alanche he afsoos ke
1: ehm mi meha kamunu dani do
2: medane
1: ya ga yanwani okay jayshan mi pahu ke tari uga dive film to betene beluna emme kamu da film tak ke ko bam he paha kolanya first film ge nam bona baale
2: first film okay mi waki rank ge no november var kamude doctor entertainment ke Then there's another come the film in a show could even take any man of BB but
1: dark entertainment
2: then a turun me found looking at see the thing there's another come the film me lobbying ki af ki and swal market for lobbying question
1: I
2: films get me what come the thing is sort of the film in see the me अरे सी विष्णु मकर ना दे एक हम कोजेशन अवारं ही वे दें जैसे बालम में उड़े फिल्म की एक एलिस्टू का ही मैंने एक फिल्म का वार है ऊपर दो हो करे
1: जानना तो ये बड़े ऐसे में जानना की फिल्म तो तिबुना जोनर तो हम फिल्टे फिल्म में हमें कामुदान का मोमेंट
2: ट्रेलर बाला आप वे उम्मीद आल आवे ए न्यूरो डाइवर्जेंट कुदी नजेशन किया बात है ekudin jashan kewadin kudin all over the south africa ilak me natija vesvaranna gore hem academic coach ekudin ay komase kon ekudin mani bodeti vege bodeti mihunda varu hama me film ge fenna kahal character ekamun ekashi ge ve ehema e vara close to my heart hama hita vara ga mauluwe subject
1: then film vara ga farate me den shahu vivah ka dekum ge kurin jashan buniya karne film i daira ga maseke taka vara shaugar wa kam swaha ga pureve farate ti kiha var ge te de pai
2: वरब बड़े थे देंगे फीचर फिल्म में के मासे के वैसे रात को भैया कुरान है
1: बा
2: इंशाल्लाह बेलुन तेरे ना मियन ना हर बात दल कुरान है
1: कैसे बनाए के लिए फिल्म के तफसील देंगे हर में हो दानी फिल्म के मेरे को विसर का फिल्म यूलान को रवे कहाँ कंकं कुरे हैं मामा गया मस जयशन मी आई की ये हमें कनी एम में दायरा फतह कुरा करनो मोली अनेहें बुना कमवानो मुनि फुल फिल्म के दायरा फतह कुरंग ऐसे तिहरी हैं मेरे मा उम्मीद की हम गया मस मी वारा कुरिया रह गए दियो जैसन मी मिहा हिसाब अंगेर ती कुरे वन ताजिबा थका दा तुर थका ती हुरिया कमे के तने वारे गिन फरात के ही तेर का माय की कुरिया देवेनी कों फरात का शुकुर अदा कोलम बेनो वाने
2: आइला जैसन गे इमीडिएट फैमिली बापा मामा पे रूही को तुम मॉरल सपोर्ट वाले दे जैसन आप तो इस then emme gae rahmette inge terega himene kudin mi hun duniya ke kankolta hoge patibe jashin brp ke faaka kuninge em ke tane bai rahmette inge nan nan emi hun ekoluga tibe gemes divehi understand why was belik brp vote wesle එහෙම එමිහොන්න එකුදින්නම් හම හිතුගේ එමෙ උමුගුන් ශුක්‍රා දකුණ දිවේ රාජ්‍යයකස් තිබි ටීම් ජයිෂන් මෝල්ඩිස් අදි බේරුග තිබි ටීම් ජයිෂන් ඉන්ටර්නැෂනල් කුදින් ඊස්ට් අයිලන්ඩ් චිලි හිසාබුග ඔස්ට්‍රේලියා ඇෆ්‍රිකාගේ ගම්තෝගස් තිබේන එකුදින් එකුදින්න හිත දශන අස්ලාගේ එකතුක හිවර් මිලිබෙන එකුදින් වර බේනු වේගේ හේජේ වට්ස් අප් වට් ආර් යූ ඩුයින් වට්ස් නිව් ඒ සුවාල ජවාබ් දෙ කොමෙ ආෆියවල විස් කුරියෙන් මෙයාලෙන්
1: එහෙමම උම්මේදකේ ඉවර කුරියරයාගෙන් දානක මජයිෂන් ෂෝමගේ ෆරාතුන්ලි හැම කුඩ කුඩ හදිගයද වඩ ශුක්‍රියා ෂෝග බෑවෙරි වෙලි
2: දෙමෙ ලිවිෆ හැම ගෙල්ලොනි බුනේ දිවේ බහක ගෙම් ෆාගාඩි ෆලම හැක ඒක කුමි හෙතුන හෙතුන නෝගේ
1: වර බොඩ ශුක්‍රියාගේ වර උපාජ මිෂෝ එංගා සවගත කොර හේද කොල්ලා මජයිෂන්ගේ මේ කේරියාගේ කොම්මේ සීතුරු වාහකට ක ෂෝම මෙන්න හිස්සා කොල්ල දිනෙම ama edeni abades kamiya ape
2: mara bada shukriya shahu ave sedeni shahu ole huni hadara ges kamiya
1: mara bada shukriya mi hafta ke game on shows nimma da wagu tumi jhon shahu ummid me kore ni show ge tere migene sunu mehmana mehmana ge wahaka ten hutenna warak kamudiga ma warang ufaver warab baajer wagu kore kedum wakela assalamu alaikum

0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नजर मिलाने की? हम तो पूरे देश की भाभी हैं।
1: बिजली सही है कि नहीं?
2: गीली पूछी दे दी।
1: आप किसको दिखा रहे हैं? आप किसको दिखा रहे हैं?
3: फिल्म के कास्ट होंगे तेरेगा फातिमा सना शेख, जयदीप अहलावत, नुसरत बरूचा, अभिषेक बेनाजी, कोंकणा सिंह शर्मा, अदिति राव हैदरी, शिफाली शाहदे, मानव कोलफद हुनरवेरी तरंगिमिने। फिल्म का दक्वेदनी इंसानी गुणतोगे तेरेगा कुरिमतिवा उंदगु हालत तके। दिहास बाविस वना हर नेटफ्लिक्स मेदवेरी को रिलीज कुरे मी फिल्म क्रिटिक होंगे फरातुम बोडो तारुही बेलिबुनो अदि नेरुनु फुरतम हफ्ता बंदुगा दिहा मिलियन वरे गिना गडीरु बला एदोसरेम कामयाब इंडिया गे ओरिजिनल फिल्म गे रिकॉर्ड मि फिल्म होदि दिहा सेकाविस वनाहरु गे फिल्म फिया ओटीटी अवार्ड्स का मि फिल्म एगार नॉमिनेशन लिबुनेरु एगे तेरे फस अवार्ड कामयाब वेस्कुरी मेगे तेरेग एमे मोलु बतला गे अवार्ड कोंकणा सेन शर्मा होता फवे।
4: भारती जी, आप घर पैदल जाती हैं?
5: हाँ,
4: हमारा घर भी पास में ही है, रिक्शा से 10 मिनट मुश्किल से और पैदल 15। पर शर्मा जी की बहू को कहाँ पैदल आने जाने को मिलेगा। आइए ना, हम आपको छोड़ दें।
5: आज कुछ खास है क्या?
4: आज हमारा दही बड़े खाने का मन है। आइए भैया। थैंक यू।
6: ये आपकी। अच्छा, आप हमसे कह रही थी ना, आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं?
5: फ्रेंड्स दशरथ।
6: अरे वो नहीं, जैसे जैसे बेस्ट फ्रेंड।
3: मिफिम के मैगनु थीमा की हसदवेरिकमा केत्तेरिकम कुडवुमा लोएब्बा तफात कुरुंतावगे सबों आदागे इंसानुगे दिरिउलुं बदल वेगिंदा गोई कोमे बाइकी वेस वाकी वाहके कम गवियस पुरिहा वाहके वेस गुलिफवानी इंसानों के अमल तक उन्नु कुन्ना ही नुकुराफदा नतीजा तका।

0: Guess the dialogue.
1: क्यों अपना गुस्सा उस पे निकाल रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा?
2: तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे अर्जुन के बारे में बात करने का रिया। आई नो हाउ टू हैंडल हिम। मैंने बड़ा किया है उसे, सिर्फ मैंने। तुम्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपने काम से। वक्त था तुम्हारे पास कभी? वक्त था?
1: हाँ देव, मेरे पास वक्त नहीं था, बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड। मर्दों से तो कोई नहीं पूछता जब वो बिजी होते हैं। जब उनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टेल मी देव, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सच तो ये है, इस घर में मर्द मैं हूं। मैं
3: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मिसुआ का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोरे को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कुरी एक गिंदा बालाना साड़ी मिशो का गेनेस्ते केस्ते डायलोग के एम में गिन सुआल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफार नगा गुरा तुम खास सहादिया एली बेने एम में गिन सुआल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशोगा
0: गेस्ट डायलॉग
4: ಮಶೂರು ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಕ್ರಮಾಕುರುಡು ಅದಿ

0: विक्रम
1: चलो भाई अपना अपना पैसा उठाओ और आना नहीं यहाँ वापस। चलो
0: ये क्या हो रहा है?
2: इतना विक्रम राठौरी जाने
1: क्यों बाप जी, देख के डर गया या डर के देख रहा है?
0: भूल गया का पिछली बार हमारे भाई टिट्टा ने ऐसन पिटाई की थी, डर कर भाग गया था तू।
1: शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए ना ही डर के, समझे ना।
3: जिस तरह तेरे बेटे को लटका कर मारा था ना,
1: ठीक उसी तरह तुझे और तेरे भाई टिटला को मार कर इस गांव की कुंडली सेट करनी है।
0: हाँ, हमार कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस गांव में सिर्फ एक ही रावड़ी है।
1: मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इस गांव में सिर्फ एक ही रावड़ी होना चाहिए।
0: मैं
1: रावड़ी राठौड़।
0: करेक्ट।
4: विक्रमा कुरुडूग रवि तेजा एक्टिनु फेन्नणी वरं असरुगद अदि हगीगी कंदत्तके एनगे एक्शन मंजरतककी वर बुरा अदि हिवरु दक्कु अदे मंजरतके अक्षय कुमार ग फरातुन रौडी रातोर्ग फेन्नणी स्टाइलिश अदि वेलुंतिरिं गयावाफद एक्टिन्ने खासको डॉट एंग्री मीफद डायलॉग तकुं अक्षय ग करेक्टर इतुर मक्बूवे
0: ये चिंता चिंता का है रे?
1: चिंता का मतलब है लाठी, ताता का मतलब है पिछवाड़ा और चिता चिता का मतलब है चटनी। यानी कि लाठी से मार मार कर तेरे पिछवाड़े की चटनी बनाऊंगा, समझे?
3: डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ।
4: विक्रमा कुरुडू बिनायफणी देखुनु इंडिया के रफुश के माहौला नमविस राउडी राठौड़ के वाहक बदल को फमणी उतुरु इंडिया के बिहार के आवश्यक मी बॉलीवुड के बेलुन तिरना गै माहौल का फिल्म बदल कुरुमा के नया बदले।